नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, जय माता दी, जय श्री राम। दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी एडलेट को 103.1 FM भारतीय प्रसारण का ये हिंदी कार्यक्रम मेरे यानी विनोद बिस के साथ। इस कार्यक्रम को आप ऑनलाइन भी सुन पा रहे हैं www.5bbi.com.au। तारीख है 23 अगस्त, जो हम भारतीय अपने देश में अंतरिक्ष दिवस के रूप में भी मनाते हैं। समय हो रहा है 3:30 और बार है रविवार। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं पहले ये गीत और उसके बाद हमारी बात जारी रहेगी आप लोगों से, लेकिन सुनते हैं ये गाना।

मित्रों, मौसम भी आजकल बड़ा सुहाना हो रहा है, कभी धूप कभी छांव हो रही है। सर्दियों का मौसम है, बहुत गुदगुदाहट होती है कि जब आप अपने काम से घर पहुंचते हैं, शाम को गर्मा गर्म चाय पीने को मिलती है और उसके बाद आप अपने परिवार के साथ खाने पे बैठते हैं तो दिल करता है कि कितनी देर रजाई के अंदर एक दूसरे को आवाज देते रहे, अजी सुनते हो, ऐसे ही चलता रहे ये जीवन। और ऐसे ही हम अपने समय समय पर आने वाले अपने जीवन में जो भी हमारे उतार चढ़ाव आते हैं उनको सेलिब्रेट भी करते हैं। और सुनते हैं एक और गीत और उसके बाद हमारी और आपकी वार्ता जारी रहेगी। बने रहिए आकाशवाणी एडिलेड पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एडिलेड पर भारतीय प्रसारण का ये हिंदी कार्यक्रम मेरे यानी विनोद बिस्ट के साथ। इस कार्यक्रम को आप ऑनलाइन भी सुन पा रहे हैं www.5bbi.com.au पर। इस रेडियो पर हम बात करते हैं अपने समाज की, जो हम दूसरे लोगों को सेवा देते हैं और शांति प्रदान करने की कोशिश करते हैं। हमारी कम्युनिटी इस शहर में, इस देश में हर समय कुछ न कुछ ऐसा नया लेकर आती है जिससे कि दूसरे समाज को भी कोई संदेश जाए। एडिलेड शहर में हर साल की तरह इस साल 11वां गणेश उत्सव यूनाइटेड इंडियंस ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया 19 और 20 सितंबर को AFL मैक्स स्टेडियम में मनाने जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि हमारे सारे भारतीय इसमें एकजुट होकर दूसरे समाजों को एक अच्छा संदेश देने की कोशिश जरूर करेंगे। आप सबको यूनाइटेड इंडियंस साउथ ऑस्ट्रेलिया इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता है।

नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, जय माता दी, जय श्री राम। दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी एडलेड को 103.1 FM भारतीय प्रसारण का ये हिंदी कार्यक्रम मेरे यानी विनोद बिस्ट के साथ। इस कार्यक्रम को आप ऑनलाइन भी सुन पा रहे हैं www.5bbi.com.au।

ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एडलेट पर भारतीय प्रसारण का हिंदी कार्यक्रम मेरे यानी विनोद बिस्ट के साथ। इस कार्यक्रम को आप ऑनलाइन भी सुन पा रहे हैं www.5bbi.com.au पर। मित्रों, जैसे मैंने कहा, मैं सदैव मेहमानों को ही नहीं आपको भी इस मंच पर आमंत्रित करता हूं। आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि हमारे इस रेडियो कार्यक्रम में आप क्यों नहीं शामिल हो जाते, क्योंकि हम बात करते हैं भारत की, हम करते हैं भारत के एक एक राज्य की, चाहे वो पंजाब हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, चाहे कर्नाटक है, चाहे आंध्र है, चाहे तमिलनाडु है, चाहे महाराष्ट्र है। हर राज्य का हर प्रतिनिधि यहाँ पर आ सकता है, अपनी बात को रख सकता है, अपने राज्य की बात, अपने संस्कृति, जो हमारे भारत में विविधता में एकता की जो एक कड़ी बनी हुई है, उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए विश्व के

सुनता हूँ, जैसे मैं बात कर रहा हूँ विविधता में एकता की, तो हम भारतीय इन्हीं सब चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। कल एडलेड शहर में हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जो इनका साउथ ऑस्ट्रेलिया चैप्टर है, इन्होंने एक गार्गी अवार्ड का जो इवेंट रखा था उसमें काफ़ी गणमान्य व्यक्तियों को सुनने को मिला। और जो महिलाएं कला संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान इस देश में दे रही हैं, उन सबको सम्मानित किया गया। अब समय हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, विनोद बिस को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, सबक है, हर हर महादेव।